0: क्योंकि उन्हें तो सारा कुछ तुरकों देता अपना वापस भी मैनों कुछ नहीं चाहिए। सतगुरु जी ने हुण अपने कोलों उन्हों होर शस्त्र बख्श दिते।
1: जड तुरंग पर मुदत बडेर
0: बहुत खुश होया कि गुरां ने मैनू शस्त्र बख्शे ने, सच्चे पातशाह ने घोड़ा बख्शिया, घोड़े ते चढ़ के सवार होके चलिया।
1: चलियो संग मिल सिंगन साथ,
0: नाल मिलके सिंघां दे ए नाल नाल श्रद्धालु पुराना गुरसिख चलिया है।
1: गमनी आनंदपुर दिशनाथ,
0: मालक जी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह श्री आनंदपुर साहब वल चले।
1: सगलो पंथ उलंघन करियो,
0: सारा पैंडा सतगुरु जी ने तय कर लिया।
1: द्वंद शब्द श्रोण मैं परियो,
0: नगारे दी आवाज जदों कन्नां दे विच संगत दे पई।
1: पुरजन सुन के बो अहलादे,
0: श्री आनंदपुर साहब दे सारे वासी सिंह सारे माई भाई आवाज नगारे दी सुन के बहुत खुश होए।
1: निकसे चारों साहिब जादे,
0: चारे साहिब जादे बड़े खुशी दे नाल बाहर आए महलां तो महाराज नूं मिल लई तैयारियां हो गई।
1: मिल मानव सब वैर पधारे,
0: मिल के सारे माई भाई अगवानी करन लई अग्यों सतगुरु नूं लैण वास्ते सत्कार करन लई चले।
1: दर्शन करत बंदना धारे,
0: दर्शन करते जाके दर्शन कीते ने उस वक्त मत्थे टेके ने सतगुरु महाराज जी नूं।
1: कुशल प्रश्न प्रभ सर्व प्रत गाए,
0: सतगुरु महाराज ने मर्यादा मुताबक सारिआं नूं उन्हां दे मुताबक सुख सांद पूछी है।
1: मिले अगर जे दर्शन पाए,
0: अग्यों आए ने जेड़े उन्होंने दर्शन

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी होई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ, प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब। अचानक तुरकां ने हमला किया, सहिदा बेग छरनी पिया, श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया, अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी को 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़ियां दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल, अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी। चौपाई तुरक सुबत जै सहज सुभाए, जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो, ये साडा राज है, मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकदा है कवि जी कहंदे ने किसे ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकदा वो इलाके दे विच बदनाम होवे जबर खां, पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उस नूं पकड़ लिया।
0: जिनी को इक तुरंग चढ़ायो, ए कुरीत फल सब नूं सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा, पठान नूं भी खड़ा कर लिया, पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया, बई असीं इहनूं एवें नहीं लै के जा रहे, इहने आह कुकर्म कीता है, इस करके असीं इहनूं पकड़ के

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मन के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निज तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत वाए कर भले फंदायो पुनजलनी मंदर प्रब आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने माता जी

0: ते कयो किरपाला चढ़न लगे जाओ तुरंग बिसाला।
1: माता जी तो सुन के कहन लगे माता जी कोई खास गल नहीं है, बस घोड़े उत्ते जदों चढ़न

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है युद्ध विच टिक के लड़ो हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम यह वर हो गया खालसे नूं भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है इहदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं बहुत वीर रस अखां विच लालियां शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है भाव इहदा नाम ज्वाला बमणी दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिरहवै तनुख संभारे
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली अपनी गलती का एहसास किया है उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जन दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी ता के दौड़ के
1: कितक हते को मार हटाए
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे
0: ये सारियां एको ही किस्म बरछे दियां ने तोमर ते सेला ते सांग सोटी का फर्क है उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है इस प्रकार उन्हां दे अगे फल का फर्क है देखण नूं एको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस कग मारे
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर भेरे पबारे
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे
0: बहुत दीर्घ मार मची बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو کہ جی میں

0: कई लोग ऐसा करते हैं कि मैं उसे तीर्थां ते जाके दान देना है, तो महाराज सच्चे पातशाह कहते इन्हां नूं भी दान नहीं देना, पांड्यां नूं इतिहादिक वो पिछे जे नौवें पातशाह गए सी गया उत्थे जां होर ना स्थानां ते कहिंदे महाराज सरबंस दान करो, महाराज की पालकी भी लै ली, होर सारा कुछ ही लै लिया। महाराज दसवें पातशाह ने फिर सारिआं नूं हुण मना कर दिता है, किते नहीं जाना होर, ना कि उत्थे दान देना, ना होर थां, ना इन्हां तीर्थां ते जाके पांड्यां नूं दान देना। कहिंदे गुरु घर दे विच ही देना जो देना, इस करके ये गल पक्की कर लो।
1: रहै एकांत प्रीत जन दूर, मम विचार सो नित भरपूर।
0: तो साडे विचार गुरबाणी दे विचार, इन्हां दे विचार करे, एकांत रहे ते प्रीति रखे परमात्मा दे नाल।
1: सिख पुगावै मेरा सिख, केस पेस ने मेरो ब्रिख।
0: इस करके सिख पुगावै मेरा सिख, मेरा जेड़ा सिख है ना, वो सिख नूं छकावे, भाव गुरसिखां दी संगतां दी सेवा करे। इसे प्रकार केस भेख जेड़े रखे हुए ने, वो मेरो ब्रिख, बिख तो भाव जहर रूप, जिन्हां ने भेस ही केवल बनाया होया है, वो तो जहर रूप है, उन्हूं खवाउणा ते खाणा।
1: दोहेरा हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग।
0: हुए सकेस कै केस बिन मेरा हुए निसंग। सो सकेस हुंदा सहत केसां दे, जां केसां तो बिना मेरा होवे निसंग, निसंग होके जिहड़ा मेरा बन जावे।
1: बामण सोई ब्यास सम दीवै दान उमंग।
0: तो वो जिहड़ा है ना केसा तो बिना, वो जे केसा वाला बन जावे, गुरु घर दा सिख बन जावे, वो तां फिर ब्यास वर्गा बन गया, ब्यास मुनि जी वर्गा बन गया। क्योंकि उत्साह दे नाल कहिंदे असीं कुछ दे सकदे हां, ऐसे जिहड़े गुरसिख बन गए होर सारा कुछ छड के।
1: कन्या देवै सिख को लेवै नै कुछ दाम।
0: सिख नूं कन्या देवे पर दमड़े ना लवे, बेचना आदक दी क्रिया करनी। फिर इसे प्रकार आ दाज दहेज आदक तो ता सतगुरु ने मना ही कीता है।
1: सोई मेरा सिख है पहुंचे लै मम धाम।
0: ओही मेरा सिख है, ओ लै के मेरे धाम अपड़ेगा, भाव मेरे सचखंड घर दे विच आवेगा। ओ की लै के आवेगा जी, कहिंदे पुन्न। ओ पुन्न कट्ठे करेगा, जेड़ा बंदा चंगे कर्म करेगा साडे दसे राह ते चलेगा।
1: सरवर गुग्गा पीर जे जोगी भूत ना सेव।
0: एक सुल्तानी पीर सरवर ने जेड़े, एक गुग्गा पीर जेड़ा है, एक जोगी जेड़े ने, एक भूत, इन्हां दी सेवा नहीं करनी। ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਓ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਸ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਸਿੰਘ।

0: इस करके थे मेरी बेबसी है।
1: मोहर जामनी प्राप्त जबै घर में रोक दो दिज तवै।
0: सो जदों जामनी भाव रात हुंदी है उस वक्त फिर घर दे विच उहनूं बंद कर दिंदे ने ब्राह्मण नूं।
1: तेरे अंतर सुपतन के काला पठै मंत्र ऐ कोट बिसाला।
0: फिर सौण वेले ओह मंत्र पढ़ लैंदा फिर उहदे दुआले लोहे दा कोट हो जांदा है।
1: बिन चिंता सुपतै सुख पावै भई भोर भोर निक सावै।
0: फिर जदों सवेर वेला हुंदा फिर मंत्र पढ़ के अपने लोहे दे कोट नूं हटा के फिर कमरे तो बाहर आ जांदा है।
1: कीतक बासर इत बेकीन नर नारी सब हो सुन लेन।
0: किन्ने क दिन रातां इस तरह लंघदियां रहियां सारिया ने महिलां दे विच नर नारी जो सन बाहर तक यह खबर जिहड़ी है हौली हौली पहुंची कि ब्राह्मण दे अंदर किन्नी शक्ति है।
1: अज अजमेर शाह के पास मंत्र शक्त दिज करत प्रकाश।
0: इस करके अजमेर शाह दे कोले ते मंत्रां दे शक्ति दा प्रगटावा लड़की ने माता नूं दस्या राजे नूं दस्या अगे उन्होंने मलाणियां नूं दस्या इस तरह इहदे मंत्रां दी ताकत नूं देखिया उसने।
1: कयो मलेछन सब समझाए इसको जानो सुगम उपाए।
0: जिहड़े मलेश लोग सन जिन्हां ने अपनी सभा दे विच मलाउणा सी उहनूं ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
1: ਤਨਕ ਤਮਕ ਇਸੇ ਪਿਲਾਓ ਸਭ ਹਿੰਦਨ ਕੇ ਮੰਤਰ ਨਸਾਓ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਮਾਕੂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਕਿਸੂ ਮੰਤਰ ਕੀ ਸ਼ਕਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਨਕ ਤੰਬਾਕੂ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਛੂਏ।
0: ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤਨਕ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵੀ ਹੈ ਤਨਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਪਿੱਤਰ ਤਜ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਤਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕਾ ਮਦਰਾ ਸਮ ਹੋ ਜਾਏ।
1: ਅਸ ਮਸਲਤ ਕਰ ਕੇ ਸਮਦਾਏ ਸਭਾ ਬਿਖੇ ਦਿਜਲੀਨ ਬੁਲਾਏ।
0: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।
1: ਸਭਨ ਮਲੇਚਨ ਆਦਰ ਕੀਨਾ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ ਤਪੋ ਧਨ ਲੀਨਾ।
0: ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਨੇ ब्राह्मण का बड़ा ही सत्कार किया आओ जी बैठो जी। तो इस तरीके जेड़ा बहुत तपस्वी बंदा सी उन्हूं ठगण वास्ते उहदा धर्म तोड़न लई इन्हां ने बहुत सारा मान सम्मान दे के पहला एक बना ली स्कीम उहदे आधार ते इन्हां ने इहनूं विच बिठा लिया।
1: कंचन को हुक्का बनवायो तिज दिखाए गुर संग मिलायो।
0: सोने का हुक्का बनवाया शाही हुक्का आते उदे विच ब्राह्मण दिखा के गुड़ मिला दिता। सो जिन्हां दे विच तंबाकू पहले ही मिलाया होया सी कहिंदे बस इहदे च आपां कुछ नहीं पाउंदे आ थोड़ा जिहा गुड़ पाया है।
1: अपर बिपर के हाथ गहाए तिसके आगे धरयो बनाए।
0: एक नकली जिहा ब्राह्मण खरीद लिआंदा पैसिआं च ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਵਾਂਗੇ ਹੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਈ ਤਪੱਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
1: ਰੇਖੀ ਪਿੱਖ ਕੈ ਸਭ ਸੰਗ ਉਚਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰਾ।
0: ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਖੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਪੱਸਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਖੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੀਂਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ।
1: ਭਲੋ ਕੇ ਬੁਰੋ ਨਹੀਂ ਸੁਧ ਕੋਏ ਨਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ੋ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਹੋਏ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੁਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ मैं इन अंगीकार नहीं करता।
1: सुन कर जे मलेच्छ बुद्धवंते हित निर्दोख करने उचरंते।
0: सुन के जेड़े उत्थे मलेच्छ सी बुद्धवंते, बुद्धि तो किसी की हो सकती है, रावण बड़ा चलाक सी, हरनाक्ष भी बड़ा चलाक सी। बुद्धि वाला मलेच्छ अते बुद्धि वाला निर्मल दो प्रकार के बंदे ने। एक विवेक बुद्धि वाले गुरमुख हुंदे ने, यह बड़ी बुद्धि वाले चलाक बंदे, चलाक किस्म के बंदे जेड़े ने, यह चलाक बंदिया ने इस निर्दोष करने वास्ते इस तरह कहा।
1: सकल सभा को क्यों ना निहारे, मिल पीबत है स्वागत सारे।
0: कहने वह साडा दिमाग खराब है, आज सारे जाने पी रहे ने, सारी सभा पी रही है, एडे एडे साडे राजा साहब, वजीर साहब, छोटे वजीर साहब, वह इन्ने इन्ने वड्डे बंदे इन चीज न पीते हैं, असी माड़े दिखते तेन, असी भी तो यह कम करते हाँ, तो जे तू यह कम कर लेगा फिर तो राजपुत्री नाल तेरी शादी हुई है, राजे का जवाई है तू, ये कोई माड़ी चीज नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बड़ी स्वाद चीज है, इस करके तेन पी लेनी चाहिए है।
1: मैं दोष कावलोका कंचन पावन को बनोका।
0: ये कहदा दोष है भाई, ये देख सोने का बनाया हुआ हुक्का किड्डा वधिया हुक्का है, सोना तो वैसे पवित्र मनिया हुआ, आ फिर गुड़ पाया, विच पानी पाया, होर से की पाया, ये वो तंबाकू बारे नहीं दस रहे कि तंबाकू भी पाया है।
1: गुड़ सन मिले बिपर ले आयो इत्यादक कह कह बिरमायो।
0: इस तरह सारे जाने जो कह लग जान फिर बंदे नूं मनना ही पैंदा, कोई बहुत पक्का होवे, जाल ठगा ने कह कह के कहिंदे ए किधर चलिया बई कुत्ता लैके, कहिंदे नहीं ये लेला है, दूजे ने भी यही कहा ठग ने फरलांग ते ओह खड़ा, कहिंदे अज किधर लैके चलिया ए कुत्ता, कहिंदे नहीं लेला है। तीसरा ठग भी कहिंदा, चौथा कहिंदा की गल कुत्ता चक्या होया, वह बंदा कहिंदा मेरा ही दिमाग तो नहीं कितने खराब, चार जाने ने कहता तू कुत्ता चुक के मैं लेला समझदा, उन्हें सुट दिता और चार ठगा ने चुक के बना लिया खा लिया। इस तरह ये जेड़े लोग बहु गिणती अज भी ने, 90% लोग ये खराब ने, 10% जेड़े धार्मिक व्यक्ति ने, लोग कहते असी पागल हैं जेड़े असी इना कुछ करते हैं, और इस करके क्योंकि हम 90 बंदे गलत ने इस वक्त दुनिया च, वो 90 बंदों की गिनती इन्नी भारू हो जाती दूजे बंदियां ते, कई बार धार्मिक व्यक्ति टबला खा जाता कि नहीं तो नहीं पागल या मैं तो गलती ना होवां, क्योंकि सारे बंदे ये चीजा खाई जाते माड़िया चीजा। इस करके ये बंदे नूं भी इन्होंने ऐसे चक्कर च पाया, इत्थे तो 99.99% ही बंदे सारे खराब बैठे सी, सिखाए हुए सी, इस करके वो सारिया ने इन प्रभावित कर लिया।
1: कई सबन के कीन सपान पई जामनी दिन जो बिहान।
0: कहने असी तेन कुछ नहीं कहते, बस माड़ा जा मूह नू ला के एक बार धुआं जा छड़ दे, फिर तू भावें चलिया जाई, कह कह के मना के उन्हूं एक बारी मूह नू मुक्का लगा ही दिता।
1: कर जमीर सुता के गयो कथा मंत्र पट कर फिर भयो।
0: जो रात हुई तो उस वक्त अपने महलां दे विच ब्राह्मण गया, जो गया उथे बड़े मंत्र पढ़न लग गया।
1: बनियो न कोट मंत्र न फुरियो बिपर बिवसवै कर पुन थिरियो।
0: इन्हें हुण अपने जानी मंत्र पढ़े, मंत्र कादे पढ़ने, हुण मंत्र गए के हुण मंत्र किथे रहिंदे कि टिके, जां तंबाकू पी लिया। जद कुरहत हो जांदी है सिख तो, सिख भी ध्यान करो, हुक्का हजामत हलालो हराम ये चार करहतां ने, नाले तां करहतां करी जाणगे, नाले कहणगे बाणी तां बड़ी पढ़ी है कोई फल तां मिलिया नहीं, तैनूं हुण कहदा फल। जद भांडे च चार गलियां हो जाण उत्थे दुध टिकदा, एक गली कीती तां भांडे च दुध निकल जांदा, ये तो चार गलियां हो गईयां भांडे च। इत्थे इहने बड़े मंत्र पढ़े, बड़े हथ पले मारे, कुछ नहीं बनिया, सारे मंत्र ही फेल हो गए।
1: मिले अजमेर सुता निज अंग मैथन करो तिथी के संग।
0: तो हुण फिर उस राजकुमारी का जोर चल गया, ब्राह्मण उत्थे हार गया, अपने धर्म तों डिग पिया।
1: जगत झूठ मैं दोष बतेरा करो बतावन प्रभो तिस बेरा।
0: महाराज कहने मैं थोन थोड़ी जी ना जिमें प्यो अपने पुत नूं बिठा के ना क्लीयर गल कर दिंदा, एवें लगो के जे करन वालियां गल्लां बाद च न्याणे बिगड़दे फिरन। अजकल दे युग विच वी ओह गल चलदी नहीं, न्याणे नूं सीधा ही मूंह ते उहदे कह दिओ बई आह गल ऐ आउं आ भाई, कल नूं सानूं ना कहीं। महाराज ने बिठा के सारिआं नूं आपां नूं कहता ऐ तंबाकू च आह दोष ने, आह माड़े कम हो जांदे ने, कल नूं ना कहो, भावें तूं संग शर्म कर, भावें औखा हो सौखा हो, तैनूं इह गल मेरी सुननी पैणी आ। इउं सतगुरु ने आपां नूं सुणा दित्ती है, कहिंदे देखो उह जिन्ना मर्जी करदा रिहा जतन, पर वह मंत्र मुंत्र दे सारे बेकार हो गए। इस करके भाई, क्योंकि सारे जिन्हें तंबाकू खा लिया उन्हें सारे जगत की झूठ खा ली, इसे करके इन्हों जगत झूठ रखा है।
1: धर्म हिंद को मंत्र समेत, कर्म विनाशन को बढ़ेत।
0: तो जो हिंदुओं का धर्म से हिंदू मंत्र वेदा के मंत्र, यह तो केस कटाउन नाल भी हो जाते हैं खत्म। और जदों एक राजा नंद की साखी सुनाई सी दसवें पातशाह ने, आप भुल गए हैं थोड़ी थोड़ी, याद भी करवा दिना मैं। महाराज ने पूछा सी सिंघां ने, महाराज हिंदू मत विच केस कटाने कित्थों शुरू होए ने? महाराज कहिंदे अज तों 2500 साल पहलां दी गल है। राजा नंद शूद्र राजा होया इक, उहने इह सोचा कि मेरा राज किते जिहड़े ब्राह्मण लोग ने अच्छे पवित्र केस रखण वाले, कुछ नहीं खाण वाले, साधुआं वर्गे लोग हुंदे सी पहलां अच्छे, कितने मंत्र पढ़ के मेरा राज ही ना उल्टा देन। उन्हें कुछ लालची ब्राह्मण कट्ठे किए, कहना जेडे मंत्र जंत्र ने इन्हों का हल दसो की आ भी चलन ना। वो कहने जे बंदे दे केस कितों भी खंडन हो जान ना, कट्टे जान माड़े मोटे, ता ये मंत्र काम नहीं करते। राजा नंद ने पहला उन्होंने कहा मैं थोनू पैसे दऊंगा जिन्ने कहोगे, पहला तुसी केस कटा लो, फिर थोड़ा थोड़ा प्रचार करो। फिर इन्होंने की किया, सारे ही पंडतों के जबरदस्ती केस कट दिते, ताकि मंत्र ना चले। आपां शहर विच तां बड़े सेफ बैठे हैं, पिंडां विच इन्ना गलत प्रचार हो रहा है कि पिंडां दे सारे मुंडे केस कटाई जांदे। क्यों? विचे विच कोई ना कोई तां कीड़ा लग्या ही होया मगर, जिहड़ा उन्हां नूं केस कट्टण लई मजबूर करदा। इस करके जे ये चीजां अपने बच्चों तक पहुंचण, बच्चों नूं ज्ञान हो, तो बच्चे कहिंदे पिता जी तुसी सुनियाओ कथा, मैं तो टीवी देखूंगा, या माता जी कथा सुन, पिता जी आउंदे ने, या दो चार बच्चे माड़े मोटे आ जांदे ने, वह जे सुनणगे तां कोई असर पऊगा उन्हां ते? वो सुनदे नहीं है। इसे करके उन्हां नूं इन्हां गल्लां दा ज्ञान नहीं कि किन्नियां माड़ियां चीजां जिहड़ियां असीं वरतदे हां। तां कहिंदे ने भाई ये जिहड़ा है ना तंबाकू, ये तो सारिआं धर्मां नूं नाश करदा है।
1: जो बिदार कल युग को जग मैं, सोच आद गुण नाशक लग मैं।
0: ये कलयुग दे विच जिहड़ा तंबाकू है चोबदार हुंदा, जिवें ये चोबदार दा काम करदा, सोच आद गुण नाशक लग मैं। ये जिहड़ा तंबाकू है ना, पवित्रता आदक सारी भंग करदा, जिथे भी किते तंबाकू आ गया उत्थे सारी अपवित्रता ही अपवित्रता छा जांदी है।
1: अदके अपावन कर बेहारो, कविन सभा में गुरु उचारो।
0: सो इस करके सारिआं नूं अपवित्र करन वाला जो तंबाकू है, ये महाराज कहिंदे मैं तुहानूं सारिआं नूं दस्सिआ कवियां दे सभा विच वी तंबाकू जिहड़ा है ना ये बहुत माड़ी चीज है, किसे दी अख अखाए, बहुत ध्यान नाल चलना, हरेक चीज वल ध्यान रखो। सो खास करके इन्हां गल्लां तों सतर्क रहना। पता नहीं मैनू किसी बंदे ने दस्या सी, कहना लाल दंत मंजन डाबर वालियां दा इह च तंबाकू पैंदा, कहिंदे बाहर लिखिया भी होया, जिहड़ा उह वरतदा होवे कई बार, कोई ऐसियां जिहड़ियां चीजां जिन्हां अंदर तुहानूं शक पै जाए इहदे अंदर तंबाकू दी वरतों हुंदी है, उह चीज आपां नूं फट त्याग देनी चाहीदी है।
1: दोहेरा उत्तर अपर जे रह गए, सतगुर सबन बताए।
0: हुण जिहड़े उत्तर बाकी रह गए सी, सतगुरु महाराज ने कवियां नूं पुछे, कवियां ने अपनी मत दे मुताबक जवाब दिते, गुरां ने फिर अपनी श्रेष्ठ बुद्धि राही उन्हां सारिआं नूं इन्हां प्रश्नां दे उत्तर सोहणे ढंग नाल दिते हन।
1: सुन कै जिल को रेदे मैं, निश्चय कछ न आए।
0: सुन के जिन्हां उत्तरां नूं, एक तां उत्तर कवियां ने दिते उहदे च थोड़ा जिहा शंका बणिआ रहि सकदा, पर जदों सतगुरु महाराज जी उत्तर देण किसे प्रश्न दा, कहिंदे उहदे च तां झटपट बंदे दे मन विच निश्चा आ ही जांदा, क्योंकि सतगुरु जी ने सुनाया है।
1: तां रिखी शुभ गोप दस अवंदीना, ਸਿਰਾਪ ਬਣਾਏ ਮਰਨ ਕਾਲ ਨਭ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏ ਗੋਰ ਕਰਮੀ ਤਜ ਜਾਏ।
0: ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਖੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਜਮਦਗਨੀ ਲਿਖੀ ਨੇ, ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਲਈ ਸੀ ਗਾਂ ਇਹ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ, ਸੰਸਰ ਬਾਹੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਸੰਸਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਖੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮਨਾ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੰਗਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲਸਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਖੁਰ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲਸਣ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸਰੀ ਬਣੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਮ ਜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਸਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਜੈਸੇ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਸਣ ਖਾ ਕੇ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਜਨ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
1: ਸਕਲ ਪਾਪ ਜੇ ਭੂਮ ਮੈਂ ਬਸੇ ਆਏ ਪਗ ਮਾਂਜ,
0: ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਭਾਵ ਖੂਨ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬੂਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ
1: ਸਕਲ ਪਾਪ ਜੇ ਭੂਮ ਮੈਂ ਬਸੇ ਆਏ ਪਗ ਮਾਂਜ,
0: ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਭਾਵ ਖੂਨ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬੂਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰੇ ਘੋੜਾ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।
1: ਸਕਲ ਪਾਪ ਜੇ ਭੂਮ ਮੈਂ ਬਸੇ ਆਏ ਪਗ ਮਾਂਜ, ਸ਼ਰੋਕਤਾ ਬਕਤਾ ਕੋ ਲਗੈ ਕਬੈ ਨ ਪੂਜ ਕਰਾਂਜ,
0: ਇਹ ਸ਼ਰੋਤਾ ਤੇ ਬਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਅੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਵੱਛ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਲੋਕ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ

0: سپتے نسمے ست گر من پاوت کر خان امرت ویلا میں اٹھی کی نو سوچ شنان.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر گوری میں سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی بار کتھا پاون پوتر پرسنگ سرون کر رہے ہاں. اس پرکار श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं. एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था के चमेली के फुल गुलाब के फुल लेके मत्था टेकया है. सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जो मन के अंदरों दुविधा मिट जाती है सारे व्यापक एको ही रूप दिखता है. उन्होंने गुरमुखों के तो दर्शन ही भेटा है. सो इस तरह फिर होर बजन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी के पास जमा पिया है. फकीर नूं कहा कि खाली हाथ आ जाते तो भी कोई डर नहीं सी पर फकीर ने कहा खाली हाथ आना तो है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी आमदन वाला हाथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप विच सही जीव है. सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने. आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडतां नाल कर रहे ने. जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सीधे कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के बचन आवे. सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी क इन्हों ज्ञान है. कई प्रश्न करे चाहे वह प्रश्न साढ़े संबंध रखते ने नहीं रखते कवियों के ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने. उन्होंने जोड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तर फिर सतगुरु दसन के नहीं असल में यह गल इस तरह नहीं है यह गल इस तरह है. कवियों के जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करे प्यार सत्कार आओ श्रवण करते हाँ. प्यार सत्कार नाल दसना करिए पवित्र गज के आख

0: चेला होगा कोई वो अपने गुरु नु समझाया करेगा जाके नहीं गुरुदेव यह गल इस तरह तुसी हले बच्चे हो थोनू नहीं हले इन्हां गल्लां दा पता भाव हुण भी तो समझाउंदे ने आके हुण भी तो कह रहे गुरु ग्रंथ साहिब जा पिछौर सिंह ते प्यारा सिंह अरके उठ खड़े हुए सी ते आ हुण होर ही खड़े दसम ग्रंथ के विरुद्ध होर गल्लां कर रहे ने इही जिहड़ा गल है ये कहने इन्हां नूं नहीं पता है असल तां सानूं पता साडियां बुद्धियां ज्यादा कम करदियां ने सारी मर्यादा ही पुठी करती इस करके कहने कलयुग दे विच ऐसे कर्म होणगे ते अन्न पावन खाए ते अपवित्रता वाला अन्न खाया करनगे कहने इहदे खाण नाल तां दिमाग चलदा जे ना पीए गाली नहीं चलता है कई तां इहो कहंदे ने वी गल मैं कहा तुसीं इह शराब पीने हो कोई बंदे सी आवें शराब पीने कहिंदा आवाज नहीं निकलदी यही तो गल साफ करने वाली चीज है
1: नहन तजे काया दुखी खामे बोर च पाए
0: इस करके कहने ने कलयुग दे विच कैसा होवेगा नहन तजे काया दुखी जे नहाउणा छड़ देणगे क्यों नहाउंदा क्यों नहीं बस एवं शरीर जा दुखी जिहे की नहा के लैणा ते जे उहनूं कहो आ रोटी खा लो आ होर चीजा खा लो कहिंदे किथे रोटी महाराज कहिंदे रोटियां खाण नूं तकड़े होणगे कलयुग च चीजा खाई जाणगे सारियां जे कह दो इशनान कर लो फिर उत्थे डिग पिया करनगे मेरा तां शरीर नहीं ठीक है
1: प्रीत थोर खुश मत बचन उधर भरन के काज
0: कहिंदे प्रीति तां होवेगी नहीं लोकां दे विच होर की करनगे कहिंदे पेट भरन लई ना खुशामद करिया करनगे इहदे कोल सानूं खाण नूं मिलदा जिथों खाण नूं मिलेगा उत्थे पैरी हाथ तक लाया करनगे गोडी हाथ लाउणगे यह बंदा बड़ा वधिया जिथों खाण नूं ना मिलिया करेगा उहनूं गालां कढ़िया करनगे
1: नारी मिलना भोग कब ग्रह ग्रह जजिए साज
0: बस इको ही गल मन दे विच होवेगी लोकां दे मनां अंदर कलयुग दे विच विशियां दी गल जे तां विशियां दी गल करो फिर तां जिथे गाउण वाले आउंदे ने आ गाने गाउण वाले गाने गाउण वालियां इस्त्रियां उत्थे दा बेअंत इकट्ठ हुंदा जिथे कोई भजन पाठ की गल होगी उथों लोग भजया करे एक होर कहते ने जिमें सारा दिन बंदा बस विशिया ही चित भी जाया करे कलयुग के कदों रात पवे कदों विशिया च परिवर्त हो कहने जेडे लोग कवि लोग होने उन्होंने जी चंकी कविता होगी कलयुग के लोग चंकी कविता सुनिया नहीं करे कहे एवं फालतू गल कर दे उ कवि किसी इसत्री की कविता सुना दे विशिया बकारा की भाव माड़े गाने जिमें अजकल चलते ने फलाना गा रहा उत्थे लोग सुन जाया करनगे माड़े गाने जिथे कोई कविशरी हुंदी है गुरु घर की गल हुंदी है जिथे कोई ढाडी सिंह आउंदे ने कहिंदे एवें जकड़ियां मारदे फालतू ये झूठियां गल्लां करदे हैं ये उहनां नूं नहीं सुणनगे लोग कि महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे फलाने थां फलाना गा रहा फलाने थां फलाना गा रहा इहनूं दो वी 50 लख रुपया करोड़ रुपया एक रात दे गाउण दा करोड़ रुपया लैंदे लोग जे कोई लोग बाणी पढ़न वाला होवेगा कोई कथा वाला कोई कीर्तन वाला भाई जी 151 बढ़िया उहनूं 151 251 उत्थे नाल 1 रुपया जरूर लैणा उह जिहड़े थोड़े गाउण वाले उहनूं क्यों नहीं कहिंदे 5,01,000 रुपया लैणा उहनूं नहीं कहिंदे 1 रुपये नाल क्योंकि उहदा निरादर हुंदा इस करके जिहड़े गाने गाउण वाले होणगे उहनां नूं लोग सत्कार दिया करनगे कहिंदा मेरे समें च जिहड़े लोग चंगे होणगे उहनां नूं लोग निंदिया करनगे इस करके कलयुग अपनी रीति दस रहा महाराज नूं कि मेरे समें च की वर्तारा वरतेगा आओ रसना नूं करिए पवित्र।

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय दे अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: वो भाव अर्थे देने के एक ता बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम दी भगती दी गल नहीं आउणी, कोई उपकार दी गल नहीं, कोई सेवा दी गल नहीं, चज दी गल ता मन च आउणी नहीं कलयुग विच। बस जदों कदों मन च विशे विकार ही रहा करनगे लोकां दे, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़ियां गल्लां करनियां, बस यही मन च चितवणगे कि कदों विशेयां च परिवर्त होईए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोक उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम दी गल करेगा नौ लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नहीं दुनिया बदनामी करेगी।
0: भेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: भेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच ओह वेदां नूं बेचणगे विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताईं पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देणगे।
0: घर घर बेचे बन्नीए बहुत शूद्र बेचते पुत्रे।
1: बाणीए अपना घर बेचिया करनगे, शूद्र जिहड़े ने अपने पुत्र नूं वेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे किहड़ा मेहनत करे किहड़ा काम करके खावे। इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जटा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटा लंबिया लंबिया बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी विछा लैणी वेख कर लेना अपना साधुआं वाला, अते विषयां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे ते अंदरों कम जिहड़े ने ओह बाले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आ के मिल गया, और कुकर्म इन्ने करया करनगे भई इह कहा करनगे मैनूं संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह दी दुनिया हौली हौली बन जावेगी।
0: आप नरक अवरण नरक करनी बने न लाग।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा ते दूजियां नूं भी नरकां विच लै के जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा भाव, छोड़ भी नहीं ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जावेगी।
0: लोकन तो बंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: बंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा के दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने ओह संसार नूं ज्ञान दियां, ताहीं एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां गप्पां।

सतगुरु कहिंदे कर हर माला टिंड परोलो। ध्यान दियो जी, जग दियां रूहां एकाग्रता बख्शियो। कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी, खूह आखो वाहिगुरु कर हर टर एक खूह बना। आ जिहड़े सवास ने तेरे इन्हां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना। महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शे, इस माल नूं जिहड़ा तूं आए नूं खिचे कौन। कहिंदे इस पीतर मन योग सरवण कीता, इस पीतर बलदा की जगह ते इन्हू खिचण नूं किनू जो मन जोड़ो, जो का मतलब जोड़ दो, जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते। ए खूह दियां माला टिंडा खिचण लई मन नूं बलद बनाओ। ते मन तां साडा सिमरन करदिआं वी दौड़दा रहिंदा है। साहिब कहिंदे ने तूं मन नूं जोड़ के इन्हां टिंडां नूं खिच, ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो, अमृत सिंचो, अमृत ते भरो क्यारे। बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे। जेडे खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया मट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे। खेती बाड़ी करते तुहानूं पता, पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले नूं पता क्यारे पा दी दे। साहब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जो के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे। ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछया, महाराज शरीर ते कहड़े क्यारे ने? आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम। खेतां विच ते क्यारे हुंदे, इत्थे क्यारे कहड़े? कहिंदे अखां नाम जपन वाले दिया अमृत ना भर दिंदियां, अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत वगन लग पैंदा। आखो सतनाम श्री पढ़ते नी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट, बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट। ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत वगन लग पैंदा। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पैंदा है। फिर आखिया महाराज होर केड़ा क्यारा भरीये? महाराज कहिंदे रसना अमृत नाल भर जांदी। गल करन लगदा वा ते कहिंदे फलाना बंदा भजन करदा मुंह चो अमृत डोलदा। नाम जपण वाले दी रसना कदी फिका नहीं बोलदी, नाम जपण वाले दी रसना सदा मिठा बोलदी अमृत वर्गा। साहिब कहिंदे ने मन नूं जो इस सवासां दी माला बना, मगर इह जे बरतना होया जे मन नूं तूं ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं, थल्यो अमृत आउणा नहीं। ओह इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई। मन नूं विच जोना जरूरी है। अमृत सिंचो भरो क्यारे। ते अगे लिखे तो मालीए ओह तो गज के बोलो ना तो

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

एक मिनट ली शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नू, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं के संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया। उस तरह वर्त रखदे आ, उस तरह श्राद्ध करवाउने आ, उस तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उस तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उस तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विचों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।